मैं गम कर मैं परेशी जी ऐसे जी बोले ब्रुकुंडो मैं अब माँ कुलो ना माँ की माँ ये बाबा माँ यूँ रीड ऐसे दे वे वे ओयो